कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ पैपार कूड़ मिया कूड़ बेबे खप हुए खार कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया करतार किसनाल किचै दोस्ती सब जग तुलनहार कूड़ मिठा

0: वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तौ आओ हमारे पास। जे सौ चंदा उग वह सूरज चढ़ है हजार इते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इके उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ।

परम सत्कारयो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना का पाठ भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी अज दे शब्द ही विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे हुए निमाणे जे हो के चवर छत्र तखत दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणों च जुड़न का यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवन नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

मेरा दुख सुख तुझही पास, धर्म दे ढांडी दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल केवार, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुर नानक

आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर पंचम कड़ा प्रसाद जी देख सच के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह साध संत विच वरतान दी आग्या बख्शो जो जी सके। आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन ज्यौन दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी।

विकास गौरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सही मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा कहे रे मान चितवहे उद्दाम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बाईता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर कहे मन पौ करया उड़े उड़ आवे सै कौसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे

ये तेरा अंत ना परावर्या सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावर्या। राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओ ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहीं तुझ जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना।

शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अबर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरि सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हों पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी में जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया।

कोए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर विखें जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरबरड़ भैले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चले हम देख तेह डूबियले मान एक न चेतस मूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलया रहा ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणम तनानक तिनकी शरना जेना तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मेला साध संगत भाजे केवल नाम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो, आप हाथ दे मोहे बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता,

प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सा लोक सवारा, नमस्कार हैं ताहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आव सवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो,

अस्थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने घड़ घड़ के पड़ पड़ की जन्ने जावद करख करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आ करख कर तुहू कबहू तुम मैं मिलत देहे तर सबहू जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाथ असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा

मरै पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को इक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट।

रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट सह शवै सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा।

कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी।

साच नाम आधार मेरा, जैन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जैन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां एहे वडियाइयां।

पंच शव तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द बाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।

सतगुर प्रसाद तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान सच्चा थान तीरथ, दस पूर्व सदा दशहरा, हो नाम हर का सदा जांचो।

तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान सच्चा थान तीरथ। दस पूर्व सदा दशहरा, हो नाम हर का सदा जांचौ, देहो प्रव धरनी धरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। पूर्वक निर्मल सदा चन, नित साच तीरथ मजना। लागे मैल तो ही है, गुणे किसको रोई है। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी, साचे साचे पावे। आनंद दिल विख पर हर, सच नाम पाया गुर दिखाया। मैल नाई सच मने,

अजान समझ साखिए सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मनिया मेरा कूच करे आवे बिखलादे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तो ना भगत भंडारी भरपुर रहा सोई नानक सच कहे बेनंती मन मांजे सच सोई आखण तोट ना भगत।

जुगो जुग अटल, दीन अर्दुनी दे मालक, सर्वरे कायनात दे सांझ रहबर, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरण कमलों पास जुड़ बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वड़ियो, जिथे गुरु के कीर्तनिया पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच श्रवण करदे हां, बाणी दा रस, बाणी दा आनंद माण रहे सां। जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, उन्हां चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इथों क तक इतिहास सतगुरु जी का सरवण कीता सी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सिखां नूं उपदेश बख्शदिआं पहलां ते बाणी नूं शुद्ध पढ़न दा उपदेश गुरु साहिब ने दिता भी जिन्ना यतन हो सके उन्ना गुरबाणी नूं शुद्ध उचारो। फिर उहदे नाल नाल सतगुरु जी ने पंज तरह की सिखी का जिक्र किया। फिर वो पंजां तरह की सिखी बारे समझाया किमें वेखा वेखी तृष्णा की ते सिदक की है ना, इस तरह पंज तरह दियां सिखी जिहड़ी है उहदा जिक्र गुरु साहब ने करके ते अपने कोल खड़ोते हुए सतगुरु जी कोल बैठी हुई सारी संगत नूं मालक ने उपदेश बख्शिया। उस तों अगे हुण धन गुरु कलगीधर साहिब जी एक कौतक वरताउण लगे ने, वह कौतक किहड़ा है और किवें गुरु पातशाह जी उपदेश सिखां नूं बख्शदे ने और विधि गुरु साहिब किन्नी प्यारी बनाउंदे ने, आओ आपां इतिहास दे उन्हां अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारन दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन इतिहास गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण। आप सरबत संगत असीस बख्शो, कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। गुरबख्शी फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जुन आर गोबिंद नो सिमरो श्री राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नाउन दयावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई।

बिन प्रीतम दुख पाए सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पहला शांत एक ओंकार सत गौर प्रसाद।

मदनागे प्रहजन स्मादपाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद तृती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद भोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद विस्माद सत विस्माद साला विस्माद

कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्ब का कुदरत वेद पुराण कितबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिन सिर गई कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत माण माण कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक।

जनक राज तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगतर जल पदम विचार।

दृष्ट तर्त तम हरन दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहन कहन अमृत कल टालन सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लागे सो पैतर गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहना कर सदा अकल लिव रह करण स्यो इच्छा चार द्रुम सपूर ज्यो निव खवै कस बिमल विचार एह तत् जानो सर्वगत अलख बिढाणी सहज पाए संचयो

हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुख होटल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द रंग प्रगटे दिन आगर गहर गंभीर अथा अत बड सो पर सदा सब बिद रत नागर संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट

तत् सेओ तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर रामै दियो गुर राम।

0: गोरख गुर अर्जन पेखो नैन
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख पर तख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट।